0: तेल तेल इना दी प्राणी धर्म दी जेड़ी जेड़ा युद्ध।
1: तो सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम अलैकुम। जिन्हें भी श्रोते वीर भैन भरा साडे नाल जुड़े ने या जिन्हें बाद च भी जुड़ना, उन्हां सारयां दा जी आयां नूं वेलकम। और अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी, प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी दिल दी आवाज प्रोग्राम न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टूडियो तो लैके थाडे नाल हाजिर हो गए जी। ते लो जी, तो बस आपां करदे हां जी।

0: घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पेरा ना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फसत जात हम मरत जात।

क्यों कमियां तो शर्मांदा है, क्यों कमियां तो शर्मांदा है। ए सदा सदा ना रहेंगे।

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तो जबर अगे चुकिया ते ना ही उन्हें अपने किसी साथी की सरगर्मी का कोई किसी किस्म का भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोला नूं जबर नाल दबाउणा, ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वो बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा घाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देण। पर उदासी जी जुल्म दी वाशर अगे अपने अकीदे तों बिल्कुल ना फिरके, वह अपनी सब तों प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी भी परवाह ना कीती ते ना ही मौत तों डरदे सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तों ना मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया, उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा। उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने, संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलों ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसाना किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा है कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओ उच्च कोटि दा कवि, लोग युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओ वधिया पुत भरा पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जां नूं युक्त ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 विच उन्हां नूं हजूर साहिब तों इक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी दे गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी, ये तिने एक दूजे के आपस में वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह हुणा ने कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अहे अगे पिछे का पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है ते एक टैलीग्राम तुसीं उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है, पता ही नहीं ओह कौन है कौन नहीं। जदों तुसीं टैलीग्राम भेजी है ना, मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा ते हैगा, तो फिर लावारस किदां होया। घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके, हां जी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है। भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमा दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हूं लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਬ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਹੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈ? ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਸਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਲਓ ਜੀ।

दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हाँ ताड़ा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खाक प्रवास रेडियो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी सो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी दे रेडियो और न्यूयॉर्क तो ताड़े नाल रूबरू हो रहे हैं जी ते आज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करन जा रहे हैं ताड़े नाल सो तानू पता कि एक दिन छड़ के ते दूसरे दिन असी प्रोग्राम करदे हां जिहदे विच कुछ गीत फिर असी कुछ अमेरिका दियां दुनिया दियां खबरां लैके ताड़े नाल रूबरू हुन्ने हां ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधु सेहत संबंधी जानकारियां भरपूर जानकारियां एक लड़ीवार कथा दी तरह दिंदे हैं जिहदे विच बहुत स्रोते उन्हां नूं सुणदे हैं क्योंकि तीन प्रोग्राम करदे हैं जी दिहाड़ी च बहुत वड्डी मेहनत कर रहे हैं कोई मफाद नहीं है हिंदी च भी करदे इंग्लिश च भी करदे ते अपने नाल इत्थे पंजाबी विच करदे हैं सो टाइम मिले ते ओह प्रोग्राम भी सुन लिया करो उन्हां दियां वीडियो ते फेसबुक भी दे फेसबुक ते लाइव भी हुंदे सो खबरां भी ऐसी कोशिश करी दी कि तुहाडे तक म्यारी खबरां लैके आईए ते कुछ गीत भी चोणवें कोशिश करी दे कि वधिया गीत कल्चर गीत जिहड़े जिहदे विच वैगलर ना होवे जिहदे विच इहो जिहा शब्दवाली ना होवे ओह असी कोशिश करी दी तुहाडे तक पहुंचाउण दी सो लो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी किरपा होगी तेरी मालका ए बाबा गुलाब सिंह जी

リオフレインクラブで全部それだけ揃えて、ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते प्रात्री पाव दिया खुशबुआ खिलार दा वाह वाह आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलार दा आप दी सोच दिया खिड़कियां खड़का के

संगम ना सा बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

रंग में मुकड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है। यमला पगला दीवाना हो रहा।

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फसत जात, हम मरत जात।

नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज परवाज रेडियो। मैं हाँ तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खाका।

नमस्ते आदाब दोस्तों, तुसी सुन रहे हो भैनों ते भरावो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम। सत श्री अकाल, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते आदाब, सारे सत्कारयोग वीर भैन भरावां नूं बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी। और प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां थोड़े नाल रल मिल के, और अज दे प्रोग्राम दे विच आपां कुछ प्यारे प्यारे गीत गाने सुनांगी, ते गाने तो बाद फिर आपां चलांगे जी खबरां वल। ओ खबरां होणगियां दुनिया दियां, अजकल जो कुछ वापर रहा दुनिया दे उपर, किन्नियां कि जंगां लगियां होईयां, उहनां दी की सिचुएशन आ। अमेरिका दी सियासत बारे गल करांगे, इंडिया दी सियासत बारे भी गल करांगे कि उत्थे की हो रहा। सो बहुत सारा कुछ मटीरियल लै के लाल सिंह चीमा हुणी पहुंचणगे जी। उस तो बाद शायद डॉक्टर साहब गुरदीप सिंह संधु साहब भी अपने नाल रलणगे, और दो घंटे का प्रोग्राम आपां लैके आ गए दिल दी आवाज। साडे प्रोग्राम का नां हैगा जी दिल दी आवाज। फोन नंबर हैगा जी 7328743259। इहदे उपर तुसी मैसेज करना होवे ते तुसी व्हाट्सएप दे उपर भी जाके कर सकदे हो, रेगुलर कॉल दे उपर भी मैसेज कर सकदे हो। सो सारयां दा शुक्रिया, धन्नवाद। सो दोस्तो, इदां करिए कि अपने दोस्तां मित्रां नूं भी दस्या करो कि प्रवास रेडियो 24 आवर तुहाडी सेवा दे विच हाजर है, तां कि होर भी स्रोते जिहड़े अपने नाल जुड़ सकन। तो डाउनलोड ऐप नूं जिहड़ा हैगा www.pravasradio.com ते उपर तुसी जाके डाउनलोड कर सकदे हो ऐप नूं, ओ करा सकदे हो अपने दोस्तां मित्रां भैण भरावां नूं, क्योंकि साडे प्रोग्राम म्यारी हुंदे आ जी, बहुत म्यारी हुंदे आ, वर्गल नहीं हुंदा, और सच्चाई ते असी हमेशा पहरा दिंदे आ, सच कहण दी हिम्मत रखदे आ, चाहे ओ अमेरिका च होवे चाहे इंडिया च होवे, क्योंकि जदों मफाद ही किसी चीज का नहीं तो फिर सच बोलन च कोई हानि नहीं है। असी बोलते ही सच आ, साडे जिन्ने भी प्रोग्राम हुंदे आ सच दे आधार दे उपर हुंदे आ। सो वीरो ते भैणो भरावो, प्रोग्राम नूं सुनिया करो और इहनूं शेयर भी कर दिया करो जे तुहाडे हिस्से च कोई गल आउंदी है। बड़ी मेहरबानी, लोग गीत सुनदे आ जी, मिस पूजा ते गीता जैलदार, लो जी तुहाडी सेवा विच आपां पहला गीत लाता जी।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 855

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते।
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी
2: परवाज रेडियो ओ परवाज रेडियो परवाज रेडियो
0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते।
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज़।

नमस्ते आदाब दोस्तों, तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज। न्यूयॉर्क तो मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खख, प्रवास रेडियो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी। सो अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी, कुछ वधिया वधिया अज डिफरेंट गाने होणगे जी। मैडम नूर जहां होएगी ते रलमे मिलमे गाने होणगे ते उहनां नूं आपां सुणदे हां।